जो छोटे मॉडल हाउसेस की तरह नजर आते हैं, उम्दा कारीगरी और जमालियात की अक्कासी करते हैं। एक ही वक्त में ये इंसानी हमदर्दी का एक इशारा है, बदले में किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर किसी वजूद की हिफाजत करता है। परिंदों के लिए ये घर जो सैकड़ों साल पहले बनाए गए थे, हमें एक अलग ही दुनिया की याद दिलाते हैं जिसे हम आज भूल चुके हैं। ये दरअसल ये जाहिर करता है कि हम एकोसेंट्रिक हो सकते हैं, यानी माहौल पर मबनी हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम माहौल पर मबनी हों। लेकिन बदकिस्मती से जदीद ज़िंदगी हमें अपने पुराने फजल से महरूम करने और हमदर्दी के एहसास को मजरूह करने का सबब बनती है। आज हमने अनातोलिया में परिंदों के घर और दुनिया के पहले सार्स हस्पताल के बारे में बात की। नस्ल खान देर में जी उलू के कलम से तहरीर करदा ये प्रोग्राम आपने सुना। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: सदर ईरान मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि अगर वाशिंगटन इंतजामी अबूरी माहदे की जिम्मेदारियां पूरी करे तो तेहरान भी उसके मुताबिक जवाब देगा। ईरानी अवान सदर के बयान के मुताबिक पेजिशकियान ने किर्गिस्तान के दारुलहुकूमत बिश्केक में मुनक़िदा शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराहान ममलिकत के इजलास में खत्ते में ताज़ा तरीन हालात पर खिताब किया। पेजिशकियान ने अमरीका के उनके मुल्क के खिलाफ 28 फरवरी से जारी हमलों को शंघाई तआवुन तंजीम के एक रुकन और एक कदीम तहजीब पर हमला करार दिया है। उन्होंने याद दहानी कराया कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी में तकरीबन 3 माह तक जारी मुज़ाकरात के बाद जून में एक माहदे तक पहुंचा गया था जिसे इस्लामाबाद मुफाहिमत नामा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वाशिंगटन इंतजाम पर वादा खिलाफी का भी इल्ज़ाम लगाया। ईरानी सदर ने कहा कि इस दस्तावेज़ जिस पर अमरीकी सदर के दस्तखत मौजूद थे इसके साथ अमरीकी वाबस्तगी 2 हफ्तों से भी कम अरसे तक बरकरार रही और उसके बाद इस मुल्क ने गैर माकूल मुतालबात पेश करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि अमरीका की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने मुतनासिब जवाब दिया है। सदर पेजिशकियान ने कहा कि ईरान लुबनान गजा और मगरबी किनारे में हालिया पेशरफ्तें इस बात की अलामत हैं कि बैन अलावा कानून के असूलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और ताकत और दबाव पर मबनी तरीक़ाकार जारी रखा जा रहा है जो न सिर्फ मजकूरा इलाकों की सलामती बल्कि पूरे खत्ते और आलमी इस्तेहकाम के लिए भी खतरा बन रहा है।
2: अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की धमकी दी और इसके रहनुमाओं पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। ट्रंप ने उर्दन और मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी अफवाज पर ईरानी हमलों का फौजी जवाब देने की धमकी दी और 1 लाख से ज्यादा मुजाहरीन की हलाकतों के इल्ज़ाम में ईरानी क़यादत पर मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। पीर को फॉक्स न्यूज़ के लिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम इन पर सख्त हमला करेंगे, इन्हें कोई जवाब मिलना चाहिए। ट्रंप ने ईरानी की आदत को सरकारी तौर पर नाकाम कौम करार दिया और इसके अहलकारों को मुजाहरीन को बड़े पैमाने पर कत्ल करने का कसूरवार ठहराया है। ट्रुथ सोशल से जारी करदा एक बयान में ट्रंप ने 1 लाख से ज्यादा मुजाहरीन की हलाकत का दावा किया और कहा है कि इन पर इंसानियत सोच जंगी जराइम का मुकदमा चलना चाहिए।
1: अमरीकी उमूर खारजा ने ऐलान किया है कि अमरीका ने इराक को बेल 412 EPX और बेल 407M हेलीकाप्टरों और इनसे मुतालिक आलात की फराहमी पर मुश्तमिल $800 मिलियन मालियत की फौजी फरोख्त की मंजूरी दे दी है। इस पैकेज में हेलीकॉप्टर GAU-19 3-बैरल मशीन गन्स रॉकेट सिस्टम्स इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड सेंसर्स मिसाइल लॉन्च डिटेक्शन सिस्टम्स रेडियोज स्पेयर पार्ट्स और ग्राउंड सपोर्ट का सामान भी शामिल है। वजारत के बयान के मुताबिक इस फरोख्त के पैकेज में पायलट और देखभाल की तरबियत के साथ साथ अमरीकी हुकूमत और कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों की इंजीनियरिंग तकनीकी और लॉजिस्टिक मदद भी शामिल होगी। वजारत ने यह भी बताया कि यह मुजवज़ा फरोख्त एक स्ट्रेटजिक पार्टनर की दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाकर अमरीका की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मफादात का तहफ्फुज़ करेगी। वजारत के मुताबिक इस पैकेज का मकसद खासतौर पर इराकी रोटरी विंग ट्रांसपोर्ट जासूसी और फिजा से ज़मीन पर हदफ बनाने की सलाहियतों को बेहतर बनाना है ताकि मुल्क की मौजूदा और मुस्तकबिल के खतरात से निमटने की ताकत में इजाफा किया जा सके।
2: अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी मुआहदे से पहले वेनेजुएला की नाकाबिले यकीन हद तक कीमती तेल की दौलत बेकार पड़ी थी। ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन और काराकास के दरमियान होने वाले नए मुआहदे से कबल वेनेजुएला के तेल के ज़खायर एक नाकाबिले यकीन हद तक कीमती लेकिन बेकार पड़ी कदर की नुमाइंदगी करते थे। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा है कि यह वेनेजुएला के लिए भी बहुत अच्छा मुआहदा है क्योंकि दुनिया की ताकतवर और दौलतमंद तरीन कंपनियां वेनेजुएला में दाखिल हो रही हैं। इससे पहले वहां तेल की नाकाबिले यकीन हद तक कीमती दौलत बेकार पड़ी हुई थी। उन्होंने मजीद कहा है कि अब हम ये सब हासिल करेंगे, हम ये तेल निकालेंगे। ट्रंप ने कहा है कि खाम तेल का तमाम हिस्सा सफाई के लिए अमरीका की रिफाइनरियों को भेजा जाएगा।
1: अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना की एक अटॉर्नी ने रियासत की रिहायशी 17 साल लड़की को कत्ल में मुआवनत का कसूरवार ठहराया है। इतला के मुताबिक मजकूरा नौजवान लड़की ने मई में सैन डियागो कैलिफोर्निया की एक मस्जिद में होने वाले मुसल्ला हमले की बराह रास्त नशरियात जारी की और हमलावर के लिखे हुए सफ़ेद फाम बर्तरी के नारों वाले पर्चे भी तकसीम किए। नौजवान लड़की को गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया और स्कूलों के दोबारा खुलने से चंद दिन कबल पीर के रोज़ एक ग्रांड ज्यूरी ने इस पर फर्द जुर्म आयद की। फॉरसाइथ काउंटी के ज़िले अटॉर्नी जिम ओ'नील ने कहा है कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि स्कूल खुलने वाले हैं और वो दोबारा स्कूल जाने वाली है, इलावाजी हफ्तावार तातीलात और मजहबी आयाम भी करीब आ रहे हैं, हमें मालूम नहीं था कि वो क्या कुछ कर सकती है। इत्तलात के मुताबिक हमला आवरों ने मजकूरा हमले के अलावा एक यहूदी इबादतगाह को भी निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की थी।
2: یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ دارالحکومت کیف اور اس کے اطراف میں ایک بڑے روسی میزائل حملے میں